स्वामीनारायण भगवान की जय। मुक्त मुनि के श्री हरि कहता के मनुष्य तन पामी ने चक्रवर्ती राज मड़े पन भगवान नो दास ना थाय तो तेना दुखनो अंत आवतो नथी। श्रीजी महाराज बात करे छे तेना दुखनो अंत आवतो नथी, अपन एवं कई अनुभव थत नहीं। आप तो जम पैसा मले वार आनंद थाय, ओहो चिंतामणि मले एवं भाव थे। पर महाराज जो आध्यात्मिक दिशा वरे अने आपने ज्ञान होय, आ बधु अज्ञाननुं कारण छे। पण ज्ञान होय तो आपणने स्पष्ट जणाय, अने थोड़ी

श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी।

गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। जय जय। आपणा नित्य नियम मुजब आपणे सर्वप्रथम हाथ जोड़ी स्वामीश्रीनी स्मृति साथे श्लोकनु गान करीशुं।